0: हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें अभिनव विहार विस्तार, यश विहार, विप्र विहार, आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बगरू ग्रीन्स, सेंट्रल स्पाइन, आनंद लोक, निलय कुंज, वसंत कुंज, हर्ष वाटिका, रियासत रेजिडेंसी, ट्रांसपोर्ट नगर, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, विद्याधर नगर, मेट्रो एनक्लेव, नाथुलाल करोल एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, पत्रकार कॉलोनी, खुशी संसार, अभयपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा अगस्त माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: हाय, मैं हूँ अमोल पालेकर। लाइफ में जीतिए और रहिए खुश। सुनते रहिए तरुण के साथ।
3: 10:35 और 42 सेकंड हो रहे हैं। दिस इज मी तरुण, आप सुन रहे हैं 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। और यहाँ आज बात रक्षाबंधन की है, तो मैं यही कह रहा था, हमेशा याद आती है अपनी बहन से जुड़ी या भाई से जुड़ी, या फिर उस राखी के दौरान आप गुजर रहे हैं रास्ते से और उस वक्त कोई ऐसी कोई बात हुई हो तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, नंबर 2200800। और दूसरी बात, आज अभिनेता दीपक तिजोरी का जन्मदिन भी है। तो 90s में इनकी बहुत चर्चित कई फिल्में रही, जिसका जुनून का तो गीत हमने सुना, क्योंकि अभी एक हमारे श्रोता ने कहा कि राखी की बधाइयों के साथ उनकी भी बात उन्होंने की। तो 90s के दौर में दीपक तिजोरी ने बहुत सारा काम किया, राहुल रॉय के साथ, आमिर खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ, बहुत सारे, लेकिन सब जगह दोस्ती के नाते आए। तो आज इस पूरे सिनेरियो पर 90s के, तो आप भी कोई उस फिल्म को याद कर सकते हैं जो कि दीपक तिजोरी की है, और वो कैरेक्टर अगर आप याद आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं यहाँ पर वो गाने भी प्ले कर रहा हूँ। 2200800 नंबर। और साथ में अगर आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सुन रहे हैं मुझे, तो 0141 जो है वो आपको जयपुर का कोड लगाना है, फिर 2200800 नंबर डायल कर देना है, और फिर वही बात जो कि राखी से जुड़ी है वो भी कीजिए। और 90s के कोई खबर नहीं थी उस वक्त, ऐसी बात उस गाने में कही गई, वो गाना कौन सा है, क्या खबर थी जाना तुमसे प्यार हो जाएगा। सुनते रहिए 100.3 FM। दिस इज मी तरुण।

श्रोतागण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 100.3 पर एक गाना पहुंच चुका है और दूसरा चलने के लिए तैयार है। सुनते रहिए सॉन्ग पे सॉन्ग ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी।

0: इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं। मस्ताने गाने सुनते रहिए सिर्फ रेडियो पिंक सिटी पर।
1: कुछ अलग एहसास होता है उन छोटी छोटी बातों का जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जैसे मम्मी की प्यार भरी डांट,
2: राहुल अरे देखो तुम्हारे हाथ गंदे हैं, राहुल धो के खाना खाओ,
1: पापा का कहना,
3: बेटा आई लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू,
1: बहन का नाना करते हुए भी फाइनली अपनी वो स्पेशल वाली चॉकलेट शेयर कर लेना।
4: क्या यार,

0: जलन
1: या पेंट के बाद बार बार निकलता नमक, दोनों समस्याओं का भरोसेमंद समाधान।
2: श्री संतोष ट्रेडर्स के नैनो टेक्नोलॉजी से बने सिकंदर सीलेंट कवच की शक्ति दीवार और छत पी जाती है, जिससे मिलती है दमदार वाटरप्रूफ सुरक्षा। पानी तेल की तरह फिसल जाता है और SST 55 सिकंदर

0: डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
0: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: चाचा भतीजी।
1: चाचा
2: ये वाली,
1: ओहो चाचा,
2: वाली जो है ये सुबह,
1: अरे क्या हिसाब किताब लगा रहे हो?
2: आओ बेटा आओ आओ।
1: अरे रे रे, ये क्या हालत बना रखी है, मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हो चाचा?
2: क्या बताऊं भतीजी, भाई कल से ये
1: खराब है, डॉक्टरी करने की पड़ी रहती है आपको, तो बस खुद ही डॉक्टर बन जाया करो आप ऐसे टाइम पे। कहाँ लेकर जाओगे इतने पैसे बचा के?
2: अरे बेटा पैसे तो ये लो 150 रुपया, जाओ और जरा कुल्फी खाओ, जाओ।
1: तुम ही रखो चाचा तुम्हारा 150 रुपया।
2: अरे सुनो तो सही, और डॉक्टर के ले चल बेटा, वास्तव में बहुत बुखार है हमें।
1: अब आए ना लाइन पे चाचा, तभी मैं कह रही थी सेल्फ डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए।
2: हाँ बेटा बात तो ठीक है,